0: ये विच नियर अंडर द स्टेयर्स प्लेटफॉर्म 8.
1: जी, व्हील चेयर फॉर प्लेटफॉर्म 8. किससे बोलता हूँ?